0: क्यों?
1: क्योंकि तुम नीलम के गम में किसी और को शरीक नहीं करना चाहती। तुमने नीलम की मौत के गम को सिर्फ अपनी दौलत समझ लिया है।
2: ये लीजिए चाय।
0: इतनी देर कर दी?
2: वो दूध जल गया था।
0: अच्छा ठीक है, जाओ अपना काम करो।
1: ये लो, पहले अंडा खा लो, मैं तब तक चाय बनाता
0: हूं। नहीं नहीं नहीं नहीं, पहले मुझे चाय दे दो, पूरा जिस्म टूट रहा है।
1: हाँ हाँ, चाय देता हूँ भाई, देता हूँ। ये तुम अंडा तो खाओ।
0: आप बड़ी जिद करते हैं।
1: थैंक यू थैंक यू। शीला शिकायत करती है कि आप अक्सर जिद करती हैं, अपनी हर बात मनवा कर दम लेती हैं।
0: चाय में दूध नहीं।
1: थोड़ा सा बस बस।
0: कहा ना नहीं।
1: अरे लेकिन थोड़ा सा भाई।
0: कोई बात नहीं, पी लूंगी।
1: हाँ ये लो। तो हाँ कमला, ये जो अब पुरानी बारादरी है ना।
0: हाँ हाँ।
1: अगर तुम चाहो तो नीलम के नाम पर यहाँ एक चिल्ड्रन पार्क बना सकते हो।
0: नहीं बिल्कुल नहीं, ये सारी हवेली और इसके इर्द गिर्द की सारी जमीन मेरी है, मेरी है।
1: ओ, मैं कब कहता हूँ कि नहीं है। देखो कमला, इससे नीलम की यादगार बनेगी। एक बच्चे की याद में कितने बच्चे खेलेंगे कूदेंगे, शोर मचाएंगे।
0: मुझे नहीं अच्छा लगता, नहीं अच्छा लगता बच्चों का शोर। मुझे तो बच्चों की हंसी से, उनके रोने से नफरत है, नफरत है, नफरत
1: लेकिन
0: है।
1: नीलम, नीलम की हंसी तो
0: नीलम की बात और है, नीलम की बात तो और है। नीलम की हंसी तो जैसे जैसे हल्के हल्के चांदी के घुंघरू बज रहे हो।
1: अगर तुम चाहो तो सब बच्चों की हंसी नीलम की हंसी बन सकती है।
0: कैसी बातें करते हैं आप? कहां नीलम और कहां बाकी सब?
1: देखो मेरी बहन, बच्चे सभी मासूम होते हैं, मुकद्दस और खुदा के तसव्वुर के मानिंद पाक। सब बच्चे एक से ही होते हैं।
0: नहीं भैया, नहीं नहीं, मैं ये जमीन नहीं बेचूंगी, नहीं बेचूंगी।
1: देखो
0: मैं
1: कमला,
0: नहीं बेचूंगी।
1: क्या तुम नहीं चाहती कि नीलम की यादगार बने, दुनिया नीलम को याद करे? अच्छा सोचो, जब यहां नई बस्ती बनेगी, लोगों की चहल पहल इस वीराने में रौनक लाएगी, तो क्या तुम्हें राहत नहीं मिलेगी, सुकून नहीं मिलेगा? वो लोग जिन्हें सर पर छत नहीं मिल सकती, अपना मकान बनाने के ख्वाब तक नहीं देख सकते, जब वो अपने मकान के आंगन में अपने बच्चों को उछलते कूदते देखेंगे, तो उनके दिलों से निकली दुआ तुम्हारे दुख को कम नहीं कर देगी। ये सब लोग तुम्हारे गुनाह का बोझ उठा लेंगे।
0: कैसा गुनाह? मैंने कोई गुनाह नहीं किया।
1: किया तो नहीं, लेकिन होने तो जा रहा था ना।
0: क्या मतलब?
1: अगर शीला ना आ जाती तो क्या टिंकू बचता?
0: हाँ लेकिन लेकिन मैंने गुनाह किया तो नहीं था ना, बच गई।
1: सोचो, तुम्हारे हाथ एक मासूम बच्चे के खून से रंगे होते?
0: बच गए हैं, मेरे हाथ बच गए हैं। नहीं नहीं नहीं नहीं।
1: क्या मतलब?
0: नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये पता नहीं मुझे कभी कभी क्या हो जाता है।
1: बस शुक्र करो, तुमसे एक गुनाह होने जा रहा था, अगर हो जाता तो क्या होता? लो लो चाय पियो, चाय पियो।
0: नहीं नहीं नहीं नहीं, मैं ये चाय नहीं पीऊंगी।
1: क्यों, क्या बात है भाई?
0: नहीं पीऊंगी ये चाय।

0: नहीं, वो कभी नीलम से प्यार नहीं करती थी। वो मेरे नीलम को मारकर अपने बच्चे को वारिस बनाना चाहती थी। मेरे हाथों को कुछ नहीं हुआ, मेरे हाथ तो बिल्कुल साफ है, कोई दाग नहीं है। देखो है? कोई धब्बा नहीं है। देख लो हाँ, देख लो। लेकिन मुझे क्या हो गया हाँ? क्या हो गया मुझे? मैं क्या क्यों बके जा रही हूँ?
1: हुजूर, इस बेचारी में इतनी जुर्रत नहीं हो सकती। हुजूर, उसका अपना बच्चा है, उसे इस घर से, यहाँ के लोगों से सब कुछ मिला।
0: नहीं नहीं नहीं, ये सब झूठ है, सब झूठ है। वो तो चुड़ैल थी। ये कौन है? कौन है ये? नीलम, तुम तो नहीं बोलोगे ना? नहीं बोलोगे ना? तुम्हारी तुम्हारी माँ ने तो तुम्हें नहीं मारा था ना? वो तो बेगुनाह है। हाँ, बिल्कुल बेगुनाह है।
1: मुझे मेरे गुनाह से बचाओ।
0: नहीं नहीं नहीं नहीं,
1: ये साये की माँ ने इतना पीछा कर रहा है, मैं कहीं भाग जा रहा
0: था। नहीं नहीं नहीं नहीं,
1: कहाँ भाग जाऊँ? ये बेचारी क्यों है? मैं गुनाह का इतराफ क्यों नहीं कर ले? मेरी नींद कहाँ है? मैं सोना चाहता हूँ, मैं गहरी नींद सोना चाहता हूँ, पर एक घंटे से सो नहीं सका। मेरी नींद कहाँ है?
0: मुझे मेरी नींद वापस दे दो, वापस दे दो मेरी नींद मुझे। अंगारों के माने बहकती आंखों में नींद की ठंडक खोल दो। मैं घंटों अपनी आंखें ठंडे पानी में डुबोए रखती हूँ, लेकिन ये जलन कम नहीं होती, नहीं होती। हर वक्त इनमें आग की बत्तियां जलती रहती हैं, गरम गरम सी सलाइयां इनमें फिरती रहती हैं। मुझे कब नींद आएगी मुझे? मैं कब सोऊंगी? मैं सोना चाहती हूँ। मैं मुजरिम हूँ, मुजरिम।
1: हाँ हाँ हाँ, मैं मुजरिम हूँ, मुझे सजा दो। नहीं नहीं नहीं, ये सब झूठ है।
0: कौन हो तुम? कौन हो? नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं, मैं मुजरिम नहीं हूँ। कौन है जो मुझे तंग कर रहा है? कौन है जो मुझे तंग कर रहा है? ये सब कहाँ चले गए? कहाँ चले गए? भैया भी बाहर चला गया है क्या? भैया,
1: गुनाह? कैसा गुनाह? गुनाह कैसा? कच्चे धागे से बनी तलवार तुम्हारे हर वक्त मेरे सर पे मंडराती रहती है।
0: हाँ, ये तलवार मेरे सर पर गिरी, और ये तलवार अभी मेरे सर पर गिर जाएगी। और इस मुसलसल खौफ ने मुझे पागल बना दिया है। ओ, ये धागा इतना पक्का तो नहीं था।
1: कोई कब तक गुनाह के एहसास का बोझ ढोता चलेगा? आखिर कब तक?
0: आखिर कब तक? मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। मैं चीने से तंग आ चुकी हूँ। मैं तुझसे भीख मांगती हूँ, मुझे बचा लो, मुझे सजा दो। जब तक मैं इस गुनाह से भागती फिरूंगी, तब तक ये मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा।
1: देखो, ये मेरे हाथों पे धब्बे, ये लाल लाल धब्बे, और ये देखो, ये नीलम के गले की नीली नीली मुलायम रगों की निशान, ये देखो, ये।
0: नहीं नहीं नहीं नहीं, भगवान के लिए इसे बंद कर दो, इसे मत बजाओ, नीलम मुझे माफ कर दो, मुझसे सब कुछ ले लो, लेकिन मेरा पीछा छोड़ दो, मेरा पीछा
2: कमला, क्या हुआ? क्या हुआ? क्या बात है कमला? कमला, ये क्या कर रही हो तुम?
0: कौन है ये? कौन था? कौन बोल रहा था? क्या बोल रहा था? क्यों बोल रहा?
2: अरे वो तो मैं अपना पार्ट याद कर रहा था भाई, वो कोर्ट सीन की रिहर्सल कर रहा था।
0: नहीं नहीं, ये मेरे जमीर की आवाज थी, जो मेरा पीछा किए हुए थी, पीछा जिसने मुझे पागल कर दिया है।
2: होश में आओ कमला, होश में आओ।
0: नहीं नहीं नहीं, मुझसे नहीं जिया जाता, गुना

0: की आग में जल रही रूह तस्कीन चाहती है, सुकून चाहती है। आसेफ ज़दा साए की मानित पीछा करता हुआ एहसास गुनाह बार बार उसके दिमाग में सुइयां चुभोता रहता है, उसे याद दिलाता रहता है कि नहीं नहीं नहीं नहीं लॉर्ड, मैं तो सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि अदालत उसे माफ कर सकती है, उसे बेगुनाह साबित कर सकती है, लेकिन उसका अपना जमीर, उसकी रूह उसे कैसे माफ कर सकेगी, उसकी रातों की नींद हराम कर देगी।
1: मैंने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया मैंने, मैं मां हूं, मैं नीलम की मां हूं, मैं नीलम की मां हूं। वो तो आया ने किया था, आया ने।

0: फोन जुटा के कोई कहां तक जिएगा, कहां तक जिएगा।
1: कैसी बातें कर रही हूं?
0: ठीक कह रही हूं भैया, मैं ठीक कह रही हूं, मुझे बचा लो भैया, मुझे बचा लो, बचा लो, बचा लो। मैं अपने इन हाथों को कहां छुपाऊं, कहां छुपाऊं? नीलम, नीलम तो नहीं, कमला, कमल कमल कमल तुम आ गए, तुम मुझे बचा लो, मैं यहाँ नहीं रहूंगी, मुझे शहर वाली कोठी में ले चलो, मुझे बचा लो कमल, मुझे बचा लो, मुझे यहाँ से ले चलो, बस मुझे यहाँ से ले चलो।
1: हाँ भाई हाँ, ले चलेंगे ले चलेंगे, पर तुम आराम तो करो, सुबह ही होते ही चले चलेंगे भाई।
2: क्या हुआ रानी माँ को?
1: कुछ नहीं, मैं अपने कमरे में रिहर्सल कर रहा था और यहाँ ये अपना गला दबा रही
0: हैं। भैया भैया मुझे ले चलो, मुझे ले चलो।
1: कमला बहन देखो, हकीकत को मान लो और फिर से जिंदा रहने की कोशिश करो। जब तक जीना लिखा है ना, तब तक जीना पड़ेगा। तुम यहीं रहोगी, इसी हवेली में रहोगी?
0: नहीं नहीं भैया नहीं, मैं अभी यहाँ नहीं रहूंगी, यहाँ नहीं रहूंगी, इस हवेली में नहीं।
1: फिर वही बात, फिर वही बात। देखो, तुम यहाँ रहोगी लेकिन इस हवेली में नहीं, बल्कि इस हवेली की जगह एक नई इमारत बनेगी, एक अस्पताल बनेगा, तुम्हारे नीलम की याद में एक बच्चों का पार्क बनेगा।
2: क्या रानी माँ, क्या ये सब मैं सच सुन रहा हूँ?
0: तुम्हारे अंकल ठीक कह रहे हैं।
2: रानी माँ,
0: रानी माँ, बहू बहू, मुझे माफ कर दो।
3: नहीं नहीं, माफ कर दो मुझे। नहीं रानी माँ, टिंकू तो आपका ही पोता है।
0: हाँ, कितना अच्छा लग रहा है ना, सोते हुए कितना अच्छा लग रहा है, बिल्कुल हमारे नीलम की तरह, मेरे कमल का बेटा टिंकू, मेरा पोता, कितना प्यारा लग रहा है।

0: उदित नारायण की आवाज में आप सुन रही थी आनंद बख्शी का लिखा गीत, जिसे मौसीकी सजाया था राहुल शर्मा ने। फिल्म थी मुझसे दोस्ती करोगे। और शामिल लीजिए, जब सुनिए प्रोग्राम की अगली पेशकश, कयामत फिल्म का नगमा कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाजों में, नगमा निगार समीर, मौसीकार नदीम शर्वन।
1: वैसे मुझे अमीरों से मिलने का कोई खास शौक नहीं है।
2: तो फिर मुझसे प्यार क्यों किया? हाँ,
1: एक कमबख्त दिल है कि गलती कर बैठता है और भुगतना हमको पड़ता है।
2: तो भुगतो।

दोस्ती फिल्म का नगमा आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में, मौसीकार थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। और सामने लीजिए अब सुनिए जमीन फिल्म का नगमा किशोर कुमार की आवाज़ में, मौसीकार है सपन चक्रवर्ती।

को राम राम, मुसलमान को सलाम, क्रिश्चियन को गुड मॉर्निंग और सरदार जी को सत श्री अकाल। मेरी तरफ देखिए, मेरे लिबास का मुआयना कीजिए। मेरे जूते हैं जापानी, ये पतलून हिंदुस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल गए हिंदुस्तानी। समझे ना भाई लोग, अपने पास एक ही चीज 16 आने स्वदेशी है और वो है मेरा हिंदुस्तानी दिल।

श्री 420 इस फिल्म का नगमा आप सुन रहे थे मुकेश की आवाज में। नगमा निगार थी शैलिंदर, मौसीकार शंकर जयकिशन। प्रोग्राम की अगली पेशकश तीन देवियां, इस फिल्म का नगमा सुनिए किशोर कुमार और साथियों की आवाजों में। नगमा निगार मजू, मौसीकार एस डी बर्मन।

और समझ लीजिए आज के प्रोग्राम की आखिरी पेशकश आप तमाम सामईन के लिए मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में शंकर जयकिशन की मौसीकी से जाए नगमा, फिल्म है पगला कहीं का।

नाथ सिंह ने आज मुजाहिद आज़ादी लोकनायक जयप्रकाश नारायण को उनकी सालगिरह पर खराज अकीदत पेश किया। सोशल मीडिया पर अपने पैगाम में जनाब मोदी ने कहा कि जयप्रकाश नारायण की अपील का असर नस्लों तक रहा और लोगों को अवामी जिंदगी को कौम की अहया के एक वसीले के तौर पर देखने की तरगीब मिली। वजीर आजम ने इमरजेंसी के दौरान जयप्रकाश नारायण की बेखौफ आवाज को भी याद किया। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। भारत ने पिछले कुछ दिनों में सऊदी अरब में रियाज के शाह खालिद बैन अल-अक़वामी हवाई अड्डे पर बार बार हमले किए जाने की सख्त मजम्मत की है। इनमें कल का शदीद हमला भी शामिल है जिसमें कई लोग हलाक और जख्मी हुए और इमलाक को नुकसान पहुंचा। एक बयान में वजारत खारजा ने मरने वालों के कुंबों से ताजियत का इजहार किया है और जख्मियों की जल्द सेहतयाबी की दुआ की है। भारत ने कहा है कि आम शहरियों और सिविलियन बुनियादी ढांचे पर बार बार हमले पूरी तरह नाकाबिले कबूल हैं और ये सिलसिला बिला ताखीर रोका जाना चाहिए। भारत ने कहा है कि वह सऊदी अरब के आवाम और वहां की सरकार के इकतदार आला के दिफा में उनके साथ यकानगत का इजहार करता है और उम्मीद करता है कि खित्ते में अमन और मामूल के हालात जल्द बहाल होंगे। दुबई में भारत के कौंसिल जनरल ने इस बात की तस्दीक की है कि तेल टैंकर MT JAM नंबर 2 में सवार भारतीय अमले के सभी 22 अहलकारों को बचा लिया गया है और वो महफूज हैं। रासल खेमा साहिल के नज़दीक इस तेल टैंकर में आग लगने का वाकया पेश आया था। भारतीय कौंसिल खाने ने कहा है कि वो मुतहद अरब अमारात के हुकाम के साथ राबता कायम किए हुए है और भारतीय मल्लाहों को हर मुमकिन इमदाद फराहम कर रहा है। तेल टैंकर पर आग लगने का वाकया इस महीने की 10 तारीख को पेश आया था। जिन भारतीय अहलकारों को बचाया गया है उन सभी की हालत मुस्तहकम बताई गई है। बरतानिया के वज़ीर-ए-आज़म एंडी बर्नहम ने डीजल की सप्लाई से मुतालिक अमरीका और रूस के दरमियान मुबैना मुआहदे पर वाशिंगटन और कीफ के माबैन बढ़ती कशीदगी के सिलसिले में यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के साथ बरतानिया की जानिब से मुकम्मल यकजहती का इरादा किया है। 10 डाउनिंग स्ट्रीट की जानिब से जारी एक बयान में कहा गया है कि ज़ेलेंस्की के साथ टेलीफोन पर बातचीत के दौरान बर्नहम ने तस्लीम किया कि गुज़िश्ता 24 घंटे यूक्रेन के लिए मुश्किल रहे हैं और बरतानिया की हिमायत का यकीन दिलाया। दोनों रहनुमाओं ने अगले कुछ दिनों में मुलाकात करके अपनी बातचीत रखने पर भी इत्तेफाक किया। बयान में यह भी कहा गया है कि बर्नहम ने इस अज़्म का इजहार किया है कि बरतानिया रूस पर पाबंदियों को मज़ीद सख्त करता रहेगा। ये बातचीत अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप के उस मुतालबे के बाद हुई है कि यूक्रेन में नया सदर होना चाहिए और ट्रंप ने ज़ेलेंस्की पर रूस के साथ हमन मुआहदा करने में नाकाम रहने का इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने अमेरिका में डीजल की बढ़ती कीमतों के लिए भी यूक्रेन के रहनुमा को जिम्मेदार ठहराया। नेपाल में गोरखा जिले में आज सुबह बूढ़ी गंडकी दरिया में पानी की सतह में अचानक हुए इजाफे के सबब कई मकानात बह गए जिसके बाद हुक्काम ने लोगों से आसपास के इलाके छोड़कर महफूज इलाकों में मुंतकिल होने के लिए कहा है। इब्तदाई रिपोर्ट्स के मुताबिक जगत के मुकाम पर 5 से 7 मकानात बह गए जबकि दीगर मकानात के भी पानी में बह जाने का अंदेशा है। नेपाल में सैलाब के बाद बिहार के सरहदी जिले मगरबी चंपारण में चौकसी बरती जा रही है। जिला मजिस्ट्रेट तरनजोत सिंह ने बताया कि जिले के गंडक दरिया में पानी की सतह में इजाफे की तवक्को नहीं है, ताहम एहतियाती इकदाम के तौर पर नशीबी इलाकों में अलर्ट कर दिया गया है। जिला मजिस्ट्रेट के मुताबिक नेपाल के कालीकोला में पानी की सतह में सिर्फ 50 सेंटीमीटर का इजाफा हुआ है। देवी दुर्गा की आराधना का नवरोजा फेस्टिवल नवरात्रि आज मजहबी जोशो जज्बे के साथ शुरू हो गया है। नवरात्रि के दौरान देवी दुर्गा की 9 मुख्तलिफ अवतार में पूजा अर्चना की जाती है। पहले दिन देवी दुर्गा की मां शैल पुत्री के तौर पर पूजा अर्चना की जाती है। नायब सदर जमहूरिया CP राधाकृष्णन और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने नवरात्रि के मौके पर लोगों को मुबारकबाद दी है। भारत और वेस्टइंडीज के दरमियान तीसरा T20 मैच आज इंदौर के होलकर स्टेडियम में खेला जाएगा। यह मैच शाम 7 बजे शुरू होगा। 5 मैचों की सीरीज में दोनों टीमें एक एक मैच जीतकर बराबरी पर हैं। जुमे को रांची में खेले गए दूसरे T20 मैच में वेस्टइंडीज ने भारत को 6 विकेट

0: से हराया था। खास खास खबरें एक बार फिर। भारत ने इंसानी हकूक से मुतालिक अक्वामे मुत्तहिदा के इदारे की दिल्ली वाकयात से मुतालिक तशवीश को मुस्तरद कर दिया है और इसे अपने अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करार दिया है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज चेन्नई में 13,000 करोड़ रुपए मालियत के प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया। भारत ने सऊदी अरब में रियाज के हवाई अड्डे पर बार बार हमले होने की मजम्मत की है। मुत्तहिदा अरब अमारात के रास अल खेमा साहिल के नज़दीक बहरी जहाज में आग लगने के वाकये के बाद भारतीय अमले के सभी 22 अहलकारों को बचा लिया गया है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: मीडियम वेव 1073 किलो हर्ट्ज, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्री डिश पर यह आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। सामिन शाम के 5 बजे चाहते हैं, यहां हमारी आज की दूसरी मजलिस की नशरियात अब इख्तिताम पजीर होती हैं। शब में 9:15 पर अपनी तीसरी मजलिस की नशरियात के साथ हम फिर हाजिर खिदमत होंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए।
2: अभी तक आप हमारी नशरियात आकाशवाणी की उर्दू सर्विस से समाप्त कर रहे थे। मीडियम वेव 1584 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी करगिल के आवाज से। सामिन अब से लेकर शब ठीक 10 बजे तक हमारी नशरियात आप मीडियम वेव 684 किलोहर्ट्ज के अलावा FM 100.1 मेगाहर्ट्ज और साथ ही साथ न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाप्त कर सकते हैं। जी हां सामिन, हमारे अगले ऐलान का भी इंतजार कीजिए। मीडियम वेव स्टॉन्चिन अगबिया 9.9 किलो हर्ट्स, मीडियम वेव त्रुगिया 9.9 किलो हर्ट्स यंग FM रिया शरिया 6 मेगा हर्ट्स दोना न्यूज ऑन AIR एपी कंगाचस आकाशवाणी करगिल ना जरिंचियो दिनी जगपादी दोना अक्टूबर इलसे चुकशिक आकाशवाणी करगिल का नंगा चिदिंग प्रचुपत पी प्रमाचिक प्रोग्राम नंबो मचे यंग यंतिशिते लपसोत प्रोग्राम यंखन सरमचुनसे चिनमुंदोना का कपोनन सखा नाचिशिते अस्सलामु अलैकुम वक्स पदर पिता तो सो तो गा सुन सुख कस्तंग अच्छी दिनी दो या प्रोग्राम सदा कल गुजुक बे दी प्रोग्राम पिरख से कहते सिंह मजद सामकुरानी तिलावत न तर्जुमा ले बिस्मिल्लाह।

0: Midi Mevdun FM Canalika Diyu Akashvani Kargilin Uvaks Padre Pitotu Sotgan Afet Sonsu Kastar Deluxi Hagui Program Pulentis Yen Misat
1: Diabetes, mellitus, po ngatang i blood na nga sugar bo agar mang picture na le. Tewa diabetes, mellitus jano galle. Lekin i blood po na ngatang mang cha malo ngatang mion la iyo yung dukpa ki diabetes jate jiks charu galle.
2: Tewa
1: jiks ay shiki manu galle. Ina nga jiks chanok jana le blood po na ngatang already sang may blood na le. ngatang unay rag na le se na nga blood sugar bo already yon ano galle.
2: Sang
1: may yon ano le blood sugar te nangku kena. Lekin tewa level jigo ano galle. तो लेवल वो अगर मापिक छाना ले जैसे ये मताए आम मतलब नॉर्मल में ले ब्लड शुगर लेवल बोले अगर मता खस्तो शुगर लेवल चुना ले तो वो साव संग यो गलो सो संग गले फास्टिंग बोले तन्ना जो अगर मताए खर्जी बजी नाम सिस्टिंग ने ले ब्लड शुगर लेवल वो 140 संग यो गलो सो संग गले सो मसंग ब्लड ना ऑलरेडी शुगर यो तनो गले 140 संग यो गलो संग गले खर्जी नाम से या खस्तो ले 90 संग यो गलो संग 100 संग यो गलो संग गले तेना जुगा अगर चीची का डायबिटीज सोंग तो युद्ध नले खून शुगर लेवल बहुत सच मंगपो छानो गले शुगर आजू के ब्लड से नले पो का सु युद्ध नले तेन हमने दक्षा ये परसेंटेज ऐसा बागे नता आजू चुना ले 15% पीपल जिनको डायबिटीज ऑलरेडी युद्ध नले सिर्फ 15% में उनला शुगर पर कंट्रोल में आते तो सौ ना मैं ना 15 में माने शुगर पर माने कंट्रोल यू आमित ले नता ये लगभग 85% सो 85% में उनका उनला शुगर उनले कौन ला डायबिटीज माने कंट्रोल ना मिले संग आम तो चीज छाड़ के म्यू ने अगर चीची दवाई नाम सदना ले खून से तो कहेंगे दवाई नहीं नदले तो शुगर चोस पिना देना शुगर गए दस सुम शीख सो या मतलब है ना खची तो मैंने 6 महीना सो मचोस मचोस पिन देते ले दवाई बोगा नहीं नियोद ना ले शुगर चोचेस पो मैं रेगुलर शुगर चोचेस पो जरूरी नो गए चे जना ये उस्ताचे से नोगले कंट्रोल दूंगा मेरे जना अगर 15% में सिर्फ शुगर पर कंट्रोल लू सदना ले डायबिटीज से ना ले दवाई बराबर नैन तेले सो वाकई में उनका कंट्रोल मचो है नहीं अलग खून चे जना यू फ्यू मचा है चे जना या तो खुने डोज पर बराबर मने नहीं ले या माने टेस्ट पर मचो है नहीं अलग खून सोसम टेस्ट चोचेस पो मजरूरी नोले टेस्ट चुचेस टाइम टाइम का टेस्ट चुचेस टाइम टाइम का तंचेस दवाई बो बराबर नेंचेस दवाई बो नेंते क्या शुगर बो कंट्रोल दो मिरुक ले तो तंचेस पु मजरूरी नहीं ले सो बस अब तेरना जुगा 45% मिये माने एवियर में ले ना शुगर दो मिरुक देते 45% ले बाकी देना लगभग आपका 55% लोगों को पता ही नहीं है कि मुझे शुगर है जितने तो 55% मिउन ला शुगर यू दिया ले उसमें शुगर है लेकिन उनको पता ही नहीं है कि मुझे शुगर है टेस्ट पाऊं मचोस पसंद तमलतास पल्ले सो मसंग तीन गिना चमचे के रूप चंग चे रख ले कि का उन ला इजम प्रॉब्लम आप एक दुगले आता डायबिटीज से नाले मन में उन्हें चीज तो शुगर भरन कंट्रोल में रुकले मांग चाहले ऑलमोस्ट 85% ना शुगर कंट्रोल में तेन ले आले सो मसंग ये एक बहुत बड़ा चंग चे नो गले का उन तेना ता ची चोचे से नो जना ले चीज तो स्क्रीनिंग ले स्क्रीनिंग चोचेस वो मजरूरी नोले दासा ता आमतौर एनसीडी ना प्रोग्राम्स आ ले मांपो का ना ये

0: Third cause is smoke from vehicles and factories. It makes the air dirty and can affect our health. The fourth cause is cutting down trees to help keep our environment healthy, and cutting too many of them harms nature. The fifth cause is releasing unrelated sewage and factory waste into rivers and lakes. Another cause is burning garbage in open places. This releases smoke and harmful gases. Finally, loud traffic, loudspeakers and noisy machines cause noise pollution. If we become more responsible and change our habits, we can help reduce pollution. Harmful effects of pollution. Environmental pollution has many harmful effects. First, air pollution can cause our breathing problem, coughing and other illness. Second, water pollution can spread diseases and kill fish and other water animals. Third, land pollution makes our surrounding dirty and can harm the soil. Fourth, noise pollution can disturb our sleep and make it difficult to study. Pollution also harms birds and animals. Some animals eat plastic waste by mistake, which can make them sick or even cause their death. Pollution can also contribute to global warming. Some gases released by human activities trap heat in the atmosphere and make the earth warmer. This can affect weather patterns, glaciers, plants, animals, and people. Pollution can also damage forests, rivers, and other natural places where animals live. Therefore, environmental pollution is not only a problem for humans, it's a problem for all living things. We must take action to protect our planet. I would like to end my speech with these beautiful words: be part of the solution, not part of the pollution. Thank you.
1: Assalamu alaikum. Mera naam Rukia Bano hai aur main Buttle se belong karti hu aur main class 9 mein padhti hu. Aaj main ek bahut hi important topic par अपनी थॉट्स शेयर करने आई हूँ. क्लीननेस, हमारी जिम्मेदारी, हमारी पहचान. सबसे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ, क्या हम अपनी करगिल को सिर्फ ब्यूटीफुल देखना चाहते हैं या क्लीन और हेल्दी भी बनाना चाहते हैं? मुझे यकीन है कि हम सब चाहते हैं कि हमारा करगिल खूबसूरत भी हो और साफ सुथरा भी. कारगिल हमारे लिए सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट नहीं है, ये हमारा घर है, हमारी पहचान है, हमारी कल्चर है और हमारी अपनी आने वाले जनरेशन का फ्यूचर है. हम अपने कारगिल की माउंटेन्स पर फख्र करते हैं, अपनी ट्रेडिशंस पर फख्र करते हैं और अपने लोगों की हॉस्पिटैलिटी के लिए जाने जाते हैं. लेकिन आज हमें अपने आप से एक और सवाल पूछना होगा, जिस कारगिल की खूबसूरती पर हम इतना फख्र करते हैं, उसकी सफाई की जिम्मेदारी क्या हम खुद उठाते हैं? आज मेरी स्पीच का पर्पस किसी को ब्लेम करना नहीं है, मेरा पर्पस सिर्फ अवेयरनेस क्रिएट करना है ताकि हम सब मिलकर अपने कारगिल को और बेहतर बना सके. क्लीननेस का मतलब सिर्फ रोड को साफ करना या गार्बेज कलेक्ट करना नहीं है. क्लीननेस एक हैबिट है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है और एक रिस्पॉन्सिबल सोसाइटी की पहचान है. हम अपने घरों को क्लीन रखते हैं, हम चाहते हैं कि हमारे रूम्स, किचन्स और सराउंडिंग साफ हो. लेकिन जब हम घर से बाहर निकलते हैं तो कभी कभी वही रिस्पॉन्सिबिलिटी भूल जाते हैं. कोई वेपर्स रोड पर फेंक देते हैं, कोई प्लास्टिक बॉटल्स रोड साइड पर छोड़ देते हैं और कोई पिकनिक के बाद अपनी गार्बेज वही छोड़ कर चले जाते हैं. हम सोचते हैं एक बॉटल से क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन अगर हर इंसान एक बॉटल फेंकेगा तो हजारों बॉटल जमा हो सकता है. इसलिए मैं कहना चाहती हूँ, जिस तरह हम अपने घर को अपना समझकर साफ रखते हैं, उसी तरह अपने कारगिल को भी अपना समझकर साफ रखना चाहिए. हमारा रोड्स, मार्केट्स, पार्क्स और पब्लिक प्लेस भी हमारे ही हैं. इनकी क्लीननेस मेंटेन करना सिर्फ किसी एक डिपार्टमेंट का काम नहीं, बल्कि हम सब शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है. अब बात करते हैं हमारी लोकल मार्केट और स्ट्रीट्स की. मार्केट किसी भी टाउन्स का इम्पोर्टेंट पार्ट होता है. यहाँ लोग शॉपिंग करने आते हैं, बिजनेस चलाते हैं और लोग एक दूसरे से मिलते हैं. अगर मार्केट के आसपास गार्बेज पड़ा हो, प्लास्टिक बैग्स बिखरे हो और या डस्टबिन का प्रॉपर यूज ना हो तो पूरी एरिया की अपीयरेंस अफेक्ट होती है. इस सिचुएशन को इम्प्रूव करने के लिए शॉपकीपर्स, कस्टमर और लोकल अथॉरिटीज सबको अपना रोल प्ले करना

0: करना होगा। शॉपकीपर्स अपनी शॉप्स के आसपास सफाई मेंटेन करें, कस्टमर वेपर्स और बॉटल को प्रॉपर डस्टबिन में डालें और अथॉरिटीज रेगुलर वेस्ट कलेक्ट और सूटेबल डिपोजल फैसिलिटीज इंश्योर करें। हमें ये भी समझना होगा कि सिर्फ डस्टबिन रख देना इनफ नहीं है, उन्हें टाइम पर एम्प्टी करना और कलेक्टेड वेस्ट को सेफली मैनेज करना भी जरूरी है। मैं अपने कारगिल के लोगों से ये चाहती हूँ, जब भी आप मार्केट जाए अपनी बिहेवियर से एग्जाम्पल सेट करें। अगर डस्टबिन पास में नहीं है तो अपनी वेस्ट पॉकेट या रख कर बाद में डिस्पोज करें। आखिर में मैं आप सब से इतना कहना चाहती हूँ कि कारगिल हमारी घर है और अपने घर को साफ हमारा फर्ज है। हम अपनी कारगिल की खूबसूरती पर फख्र करते हैं, अपनी कल्चर पर फख्र करते हैं और अपनी पहचान पर फख्र करते हैं, लेकिन असली फख्र तब होगा जब हम अपनी कारगिल को क्लीन रखने के लिए खुद भी जिम्मेदारी उठाएं। हमें सिर्फ गवर्नमेंट से उम्मीद नहीं करना चाहिए बल्कि अपनी तरफ से भी एफर्ट्स करना चाहिए। गवर्नमेंट अपने काम करे, एडमिनिस्ट्रेशन अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाए और हम सिटीजन अपनी ड्यूटी पूरी करें। आज हम सब एक प्रॉमिस करें, हम रोड्स पर गार्बेज नहीं फेंकेंगे, पब्लिक प्लेस को डर्टी नहीं करेंगे, प्लास्टिक को अननेसेसरी यूज कम करेंगे और दूसरों को भी क्लीननेस के लिए इनकरेज करेंगे। याद रखिए दोस्तों, कारगिल को क्लीन बनाने के लिए हजारों लोगों की ज़रूरत नहीं बल्कि हर इंसान के अंदर जिम्मेदारी का एहसास होना ज़रूरी है। मैं अपनी स्पीच को एक पावरफुल मैसेज के साथ एंड करना चाहती हूँ। कारगिल की खूबसूरती हमारी पहचान है, उसकी सफाई हमारी जिम्मेदारी है और उसके बेहतर फ्यूचर हमारे आज के एक्शन पर डिपेंड करते हैं। आइए मिलकर एक ऐसी कारगिल बनाएं जहाँ हमारे बच्चे क्लीन सराउंडिंग में बड़े हो, हमारे पब्लिक प्लेस साफ हो और आने वाली जनरेशन भी हमारी नेचुरल ब्यूटी पर फख्र कर सके। क्लीन कारगिल, हेल्दी कारगिल, ब्यूटीफुल कारगिल। लेट अस नॉट जस्ट टॉक अबाउट क्लीननेस, लेट अस प्रैक्टिस इट। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी योर वैल्यूएबल टाइम एंड लिसनिंग टू माय थॉट्स पेशेंटली। जज़ाकुमुल्लाहुल खैर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।
1: अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सहरा बतुल है और मैं प्रेसपोन से हूँ। मैं 9वीं क्लास में पढ़ती हूँ। तो आज मैं आपके सामने अखलाक व अदब की अहमियत के बारे में एक टॉपिक लेकर आई हूँ। हुस्न अखलाक और अमदा अदब इंसान की शख्सियत का सबसे खूबसूरत ज़ेवर है। अखलाक से मुराद बातचीत का शाइस्ता अंदाज, दूसरों का एहतराम और मुआशरे में तहजीब के साथ ज़िंदगी बसर करना है। एक बाअख़लाक इंसान न सिर्फ मुआशरे में इज्जत की निगाह से देखा जाता है बल्कि हर दिल में अपनी जगह बना लेता है। उम्दा अदाब में सलाम में पहल करना, नरमी से गुफ्तगू करना, दूसरों की बात तवज्जो से सुनना, शुक्रिया और मुअज़्ज़त जैसे अल्फाज का इस्तेमाल करना शामिल है। अखलाकियात दरअसल इंसान की तरबियत का आईनादार होती है। अगर कोई शख्स कितना भी तालीम याफ्ता क्यों न हो, अगर वो अखलाक से खाली है तो इसकी तालीम बेअसर महसूस होती है। एक ब्राह्मण और खुशगवार मुआशरे की तश्कील के लिए अखलाकी अकदार को अपनाना नहायत ज़रूरी है। अगर हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हुस्न अखलाक और अदब का ख्याल रखें तो हम अपने माहौल को मोहब्बत और एहतराम का गहवरा बना सकते हैं। अखलाक व अदब इंसानी ज़िंदगी का वो लाजमी जज़ू है जो फर्द को मुआशरे का एक शाइस्ता तहजीबी याफ्ता और काबिल एहतराम रुकन बताते हैं। लफ्ज़ अखलाक खलक की जमा है, इसके मानी सीरत, आदत और किरदार के हैं। उम्दा अदाब से मुराद गुफ्तगू, नशस्त हुआ बर्खास्त और बाहमी मुआमलात में शाइस्तगी, नरमी और करीने को बरकरार रखना है। इंसान की हकीकी खूबसूरती

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज चेन्नई में 13,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने इसे ऐतिहासिक अवसर बताया। उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं से संपर्क सुविधा बेहतर होगी, उद्योग और व्यापार मजबूत होंगे तथा राज्य के युवाओं के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। श्री मोदी ने कहा कि ये परियोजनाएं दैनिक यात्रा आसान बनाएंगी और राज्य की आर्थिक वृद्धि में मदद करेंगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि तमिलनाडु में परंपरा और आधुनिक विकास साथ साथ जारी हैं।
1: मंदिर से मेट्रो तक तमिलनाडु के ये अनुभव, यही आज के भारत की स्पिरिट है। भारत अपनी सांस्कृतिक शक्ति से प्रेरणा लेता है, विज्ञान की प्रगति से आगे बढ़ता है और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए नए अवसरों का निर्माण कर रहा है। हमारी विरासत और भविष्य की हमारी आकांक्षाएं साथ साथ आगे बढ़ रही है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय के सहयोग से यह यात्रा जारी रहेगी। इससे पहले श्री मोदी ने चेन्नई मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण के पूनमल्ली वड़ा पलानी खंड का शुभारंभ किया। चेन्नई में एक अन्य समारोह में प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया उभरती हुई चुनौतियों का समाधान तलाश रही है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि देश के युवाओं में ये समाधान देने की प्रतिभा और क्षमता है। श्री मोदी ने कहा कि युवा विकसित भारत का संकल्प पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।
1: विकसित भारत के लिए जो नए आइडियाज चाहिए, जो नए सॉल्यूशंस चाहिए, उनसे भारत ही नहीं विश्व का भविष्य भी तय होगा। टुडे द वर्ल्ड इज लुकिंग फॉर सॉल्यूशंस एंड यू हैव द पोटेंशियल टू प्रोवाइड दिस दोज सॉल्यूशंस।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने शांतिपूर्ण ढंग से एकत्र लोगों को अवैध हिरासत में न लेने और यातायात सुचारू तरीके से जारी रखने के निर्देश दिए हैं। न्यायालय ने दिल्ली में बैरिकेडिंग व्यवस्था की समीक्षा करने, मेट्रो सेवाएं समय सारणी के अनुसार और इंटरनेट सेवा निर्बाध रूप से जारी रखने को कहा। भारतीय जनता पार्टी ने सांसद और प्रोफेसर बिमोल अकुइजम के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने को लेकर कांग्रेस की आलोचना की है। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय ने यौन उत्पीड़न के आरोपों के बाद बिमोल अकुइजम की सेवाएं समाप्त कर दी थीं। नई दिल्ली में पार्टी सांसद बांसुरी स्वराज ने कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व की चुप्पी पर सवाल उठाए और सांसद के खिलाफ कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई करने और तत्काल निलंबित करने की मांग की। दुबई में भारतीय वाणिज्य दूतावास ने पुष्टि की है कि तेल टैंकर MTGEM पर सवार भारतीय चालक दल के सभी 22 सदस्यों को सुरक्षित बचा लिया गया है। ये घटना रास अल खैमा तट के पास जहाज में आग लगने के बाद हुई। सऊदी अरब के किंग खालिद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हूती विद्रोहियों के हमले में 12 लोगों की मौत हो गई और 309 अन्य घायल हुए। मृतकों में 4 सऊदी और 8 विदेशी नागरिक हैं। भारत ने इन हमलों की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि लोगों और असैन्य ढांचे पर हमले अस्वीकार्य हैं और इन्हें तत्काल रोका जाना चाहिए। भारत ने संप्रभुता की रक्षा के लिए सऊदी अरब की जनता और सरकार के साथ एकजुटता व्यक्त की। नेपाल में गोरखा जिले में बूढ़ी गंडकी नदी में आज सवेरे अचानक आई बाढ़ से अनेक पुल और घर बह गए। किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। लगभग 50 लोगों को बचाया गया है और 10 लोग अब भी लापता हैं। खोज और बचाव अभियान जारी है। भारत और वेस्टइंडीज के बीच तीसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज शाम 7 बजे से इंदौर में खेला जाएगा। 5 मैच की श्रृंखला में दोनों टीम 1-1 की बराबरी पर हैं। अनमोल खरब ने तुर्की इंटरनेशनल चैलेंज बैडमिंटन का महिला सिंगल्स खिताब जीत लिया है। अनमोल

फाइनल में आकर्षी कश्यप को हराया। उधर मिस्र में उदयवीर सिद्धू ने निशानेबाजी विश्व कप में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीत लिया। लद्दाख पुलिस बाइक रैली टीम गुजरात में राष्ट्रीय एकता दिवस समारोह में शामिल होने के लिए रवाना हो गई है। रैली का उद्देश्य राष्ट्रीय एकता, एकजुटता और नशा मुक्त भारत को बढ़ावा देना है। भारतीय नौसेना का जहाज सह्याद्री अभ्यास इंद्र 2026 में शामिल होने के लिए रूस के व्लादिवोस्तोक पहुंच गया है। ये द्विपक्षीय अभ्यास 13 से 18 अक्टूबर तक चलेगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: and damaged hydropower projects in Gorkha district. The flood struck in VRs today, sweeping to the settlements in Chumnobri rural municipality. At least 10 people remain missing with no immediate reports of casualties. Preliminary reports indicate that around 3 dozen houses have been washed away. The suspension bridge connecting Nyakshet and Pilim Bazar was also swept away. Nepal Army personnel and other security agencies have been deployed for search and rescue operations, while the full extent of the damage is yet to be assessed. In men's cricket, India will face West Indies in the third T20 International at Holkar Stadium in Indore today. The match will begin at 7 p.m. Indian Standard Time. The five-match series is currently levelled at 1-1. And with that, we end this news bulletin.
1: डैडी डैडी गाड़ी रुक गई, चलाओ ना।
2: बेटा चाबी भर दूंगा, फिर चलने लगेगी, ये देखो।
1: डैडी देखो फिर रुक गई, क्या हर बार चाबी भरनी होगी?
2: हाँ बेटा हर बार।
3: इसलिए LIC लाया है जीवन लाभ, एक ऐसी एंडाउमेंट पॉलिसी जिसमें एक निश्चित अवधि के बाद आपको प्रीमियम नहीं भरना होगा, फिर भी फायदों का सिलसिला चलता रहेगा।
4: LIC जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी।
5: QR कोड स्कैन करो, 5,000 का कैशबैक पाओ, वाह दिल बन गया।
6: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए।
7: RBI कहता है
8: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
9: आज तो पार्टी चाहिए,
10: चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे।
11: आइडिया, यही करते हैं पार्टी।
9: पिज्जा पार्टी, ये चल अपना कार्ड और पिन दे।
11: मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें।
9: बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं, नो शेयरिंग।
11: RBI कहता है जानकार बने, चौकन्ने रहे।
12: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

0: Pongcha, duna nyambu yambu employment ang generate chandu de je single dak samajer sangates seed production hechirik fenaga to alag business shi so hela bingate seed po farmers sam shila da khayod na dega nangate supply banadik seed or feed plant chi fese do business ang chunadik de business shi se ne odola khorang alag feed fish feed khuri alag business dulchin sa do in fishery si
1: bakshi ju chana iris and business ne na khachi geris mol sang ki hatching zere di thul pu khara ha ju alag hai bas din basina alag marketing bana ya den sudla feed meal di din da agar ka tumata sa ju di alag ngati tarike gyu ta ki ka ho ki ngate sa ngate nyani fila zan chi chose chose soncha si
0: Do feed trout la trout po carnivorous fish in kosha zes po kos prefer bat sa de fila local level ikana ngata feed po chuna ka to khoyanu ude zan piano protein zyada umar goshin khoyanu minerals zyada umar goshin lipids umar goshin carbohydrates umar goshin khoy nutritional requirement po barabar umar goshin maya source ude source ut khanun cheez ude source sun ओदे न्यूट्रिएंट्स सुनी ओदे लिपिड्स रे कार्बोहाइड्रेट्स रे प्रोटीन्स रे ओदे सोर्स न्यूज बसिनगा ता फीड ट्रेनिंग छिन सो फीड यंग नो दो ची सुनियो म जरूरी क्योंकि ट्राउट पोंगा ता शाजा खान शा प्रेफर बखानी दे फेला
1: बख्शीस मैम दला सला रा फिश मैम मा यंग ची ची चोगेन छ सिन दे स्कूल ला चेरे बोलना
0: या ता ngati ट्राउट फार्मिंग जरे दक्सन लदा खास सिर्फ द फिम फार्म बियाना फिश पोपिंग से मार्केट ला फ्रेश फ्रेश फिश सेल बचा मैंने दुजोक शिमांग में यो थिक मिंदुक दे दो मेन मांग यंग स्कोप खेमो यो छ जैसे कि ngates ओदे फिश शाओ ngates smoked fish re smoked fish joinyan chin ngata dry base dry fish joinyan chin frozen fish joinyan chin da zola fish hala fish fillets re restaurant sa ga hotel sa ga tang ma de fish fillets re fish fingers re fish pickles re by the value added products ma mo joinyan chin sirif shao za za chang chamen fish sha nga de kasum kasum product jar bo shin de joinyan chin ma ya do is pe hum bahut sare business khol sakte hai
1: नक्शे जो छाने नहीं आता है जो देना ही नियाशिया खुरी का आता लुक्सन लुक्सन आता तरीके का आता देने को आता बिजनेस बनाने चाहिए दूसरा जो छाने देना सोच लगा आता है आती गवर्नमेंट डिपार्मेंट उन्हें इसमें आती है ट्रॉप फार्मिंग ये लास्ट पे लोग प्रमोट बनेंगे ना गतु गतु लक्ष्य दिखेंगे तो बात चेंडू गति पैसे संग सहित पाला
0: ता डिपार्टमेंट निकाना ची फायदा यूज़र ना डिपार्टमेंट इस गतांगा टेक्निकल ट्रेनिंग तंग चिंसा फार्मर्स ला ट्रेनिंग तंग चाह गजुगा कल्चर बार गुशिन गजुगा मैनेज बार गुशिन प्रोडक्शन बस सेटिंग ना कंजम्पशन सब पाची बसे प्रोसेस पुयो प्रोसेस ची यूज़रे ट्रेनिंग तंग चिंग गतांगा डिपार्टमेंट इस वा डिपार्टमेंट इस अगर फार्मर्स ची फार्म चिक फेचिन ना कोई साइट सिलेक्शन पिगा साइट पु सिलेक्शन ला मदद बचिन साइट पु गजुग शी उमर गुशिन जरे खोज गाइडेंस तंग चिन दोना न्यांबो न्यांबो की वाटर क्वालिटी ट्री क्वालिटी माना गला उमर गोशिन बार बार रेगुलर उसको मॉनिटर बंद ऊपर गोशिन दो मॉनिटर बचस फाउंड डिपार्टमेंट इज हेल्प बचिन वाटर क्वालिटी असेसमेंट बचिन खे डिजोल्व ऑक्सीजन पुचाम शिदुक अमोनिया चाम शिदुक बराबर दुग अमिन दुग फार्म प्यान उजरे दोनसा गवर्नमेंट इज मदद तंसिन सा क्वालिटी सीड सप्लाई बचिन गवर्नमेंट इज तंगमत सीड्स हाला फीड अंग तंसिन सब्सिडी का तंगमत देगा ते डिपार्टमेंट इज सा दो चोक्सी मदद तुन गति फार्मर्स ला थोपचिन डिजीज मैनेजमेंट डिजीज शिगोना कौन इस असिस्टेंट बचिन की कौन इस गाइडेंस तंसिन गा चोक्सला ट्रीट बचिन डिजीज जो खानी फिश पोजरे दो चोक्स हेल्प उन थोपचिन
1: बख्शे जो छाना ने गति गवर्नमेंट इज जो गता अलग अलग स्कीम सा चोक्स होते देना चोक्सला फिश फार्म यानो गता दन बना प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना रोली का गता लुक्स लुक्स गता जोक्स गता छोट चुक जसिन छ हजु छन दा मिन मा यदि यंग स्पेरा चिक चिक दा जुनर गेल बछ छ तो पकी गति ट्रॉट फार्मिंग यानो गा सुचिया इंटरेस्ट इतना फेसे सा नौजवान तबका इन या हा फार्मर सुनला गा सु गा सु खों खों आ दी फिश फार्मिंग यंग का तो अगर इंटरेस्ट का तो इतना खों आ खों फिलेरेस गा सु मैसेज शेरेस प्रोजेक्ट सने
0: कासा बख्शीस ना यंता सुंग ट्राउट फार्मिंग या इंटरेस्ट युद्ध ना कतो सबसे पहला यंतस सकेत पो यंता जरूरी इन गावे कंगा यंतस फार्म जरूरी मेन की छो सकेत चीज सुनते सुनते सुनते कंगा तां बिजनेस पो सुनते कना फल्ला निंते निंते बसे शुरुआत का निंते कना यों मदे तो फार्मर्स सुन फार्मर्स सुलंगा जुझे रूपा की यंतस

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल, जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: मुनालेकू मेचरमोनी खोरतांग स्पोखुरे गयांग रशी गेंता नंबो थुकसेत प्रोग्राम यन खान शर्मा सुनचे अशनमो सगा युजना सलामपो कबूल सोंशिक यले रिनमोचे प्रोग्राम आज नाबिन खानुन दिरिंसी खोरतांग स्पे नुंगाजा यंतांग सुखपा टॉपिक रे खुरियोंसेत इंशाल्लाह यंतांग दिकना फनकेरिक थपतुक सबो सेक्शनल लंगा जंतांग सुखपा इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड स्कोरलास बेरा रिलिप चुगेत देर गैपना जना टॉपिक पिका यंतांग सुखपा टिसुगांग लिप चुगेत छानानी इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड सेशना बेनुल अकवा मी थोरिका बोमोनी जक जेरे लोबिंग रेसिस दिरिंगी जक पेनु अक्टूबरी चुक्षीगा मल्ला ख्योमाचुक छानानी दिजक पो मल्ला ख्योमितोन पो इनसुक दुनियागांग पेनु बोमोनी मुश्किलाती बारानुक शंग स्कूल बचा दुना हागो तंग माचु गाउन जेशना नतंगा जेंडर बेसिका बुसाने फरक बचा दुना उमर सुनते अनुक बख्तून बसे तंचा शेल सबचा स्पे अनुक ना महरूम जकचा दुना खून नंबो बदसुलुकी बचा खून नंबो नुरगुनी बचा दून गामी फिया दिरिंगी दी जक पे अनुक हागो तंग मचुक दे फिया दी जक पो मल्ला क्योंसे इंचुक दी जक पो बोमुन क्यूत्रचन स्ट्रीमिंग ना मीमंग सुनला शुर ना हागो लिपचुक बचुक दुना खुई इंसानी हकूक थोबार गोशा इंजेरेन हागो तंग मचुक अकवामी मुतहद दे जनरल असेंबली 2011 अनु अक्टूबर चुक्षी का बेनुल अक्वामी बोमोनी जग शोसे तंस पिंचुक यंग दी जग पो गोमा 2012 अनु मल्ला क्योंखान इन मिंचुक दी जग पे अनु बोमो गंगमा शेसी स्काप्स थोप पी जरूरत पे का जोर तंगमा रोशा इंजरेन डिस्कोरला फ्रिन फ्रोचुक पचुक बोमोनी तालीम ना खुंगी स्कप सुनर ग्यालर शुए रुख्स बचा बोमोन ला खुंगी मुश्किला तुन्यां ना कुस्कत फिंगमा प्लेटफॉर्म चिक फराहम बचा गाव खुंगी फिला छासा इनां हुकूमत ना तंजीमुन दोना मिमंग मिमंग सुन दुनियां दुचुक्स पॉलिसी कतुन दुचुक्स खोरतांस कतोर चुआर गोशा इन गाव बोमोनी हुकूक उन स्ट्रों से लुस्पर गुसुक जिरे छाना दी जाक पोचा छाचाई निजर ना अलामी साथे का बोमोनी अक्सर रंगी उमर पोना जिन्स स्ट्रोली का नुकसान्यां खुआ शिकार छाचुक दुना शेस यांनु कतोस्ताना बोमो खिमो न्यालबाचान ना सकाफाती चोजो बाजो या नंखांमी बोच फोक्से दी वाजी का खुंग सुकुल ना शेस चापचास प्याना खुंग महरूम लुस्पा छातां दोना जिन्सी तशद्दुद यंग जिरना बोमुन सुनचे बख्सुन बचा दोना जिस्मानी व जिन्सी तशद्दुदी खिमु जिक्समु शिकार योतंग यंग जिरना दोना स्कप सिबार्यानु कतो जिरना कतो यंग स्पार सेनों दोना रंगी करियर फिला मौका कम थोबा छातंग फेसेसंग साइंस ना टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग दुनिया नु बोमोनी थिक पोंग इंचे थोबा छेतंग छानानी अति बुसाना बोमेनु फरक छाना कतो मतंग दी मतंग दी ngatanga technology science engineering dunia nu ngatanga bomo ngatanga khajik thongma micha tsuki ngatanga dius basi ngatanga busana bomo farak chana ka to dius basi ngatanga bomon kam thongsin tsuk ni chana ngati ngati yulina nu ngatanga dare na ngatanga hodani ma micha da ngati busana bome chang farak chi chen me ngatanga magar in na ngati hindustan yang feste yulune nu yul khaji ya nu ngatanga bomona busi farak cha chen yote in tsuk बसे गती बोमोनिका नजुल मंग छेनु तिनसु की बोमोला नक्सबर्दो मंगमो फोगे नते इनसु निदिरिंग जकपुदी फिला अहुम इनंग की बोमोनिया सरमायाकारी दुना दुनिया यंग गुर्जा ख्योमी सखबसे क्युत्रचन चिगंगना इनसु निंगतांग बोमोनि शेस सबजस पोदो नंगतांग बोमोन खुंतांग हुंती आजादी का थोप नकतो रंग सुई चंग बेजिक्स मेत पा रंग आजादी का फुते तांग नकतो खुंग शेस इन्ना गार्ची के इन्ना

प्रीमियम मिन्से बोनस पिखेमु गलते जनते सरकारी नौकरी बैंक पीएसयू या यूनिवर्सिटी यूनियन लास बादना यंतेस स्टोंग निशी कना 50 लाख सपेक पॉलिसी

0: जल्दी टिफिन पैक करो। राजू मोबाइल छोड़ो।
1: अरे दीदी वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड नहीं आया है। मिल गया, अभी कॉल करता हूँ दीदी।
0: बगैर नंबर चाचे, अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं।
1: तो फिर सही नंबर,
0: बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या कार्ड पर।
1: आपने तो बचा लिया दीदी।
0: काम से नहीं।
1: करता हूँ।
2: RBI कहता है
3: सही माली बर्ताव करे आपका बचाव।

0: हो गया इंतजाम।
1: किसका?
0: गुड्डी की फीस का।
1: दिखा। 20,000 का लोन तुरंत? पता है कौन दे रहा है, ब्याज कितना है? लोन विनियमित संस्थानों से ही ले और कर्ज उतना जितनी जरूरत, वो भी जांच कर। हो गया इंतजाम, पगार एडवांस में भेजिए।
2: आरबीआई कहता है,
3: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
4: जल्दी टिफिन पैक करो राजू, मोबाइल छोड़ो।
5: अरे दीदी, वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड नहीं आया है। मिल गया, अभी कॉल करता हूँ दीदी।
4: बगैर नंबर चाचे, अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं।
5: तो फिर सही नंबर?
4: बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या कार्ड पर।
5: आपने तो बचा लिया दीदी।
4: काम से नहीं।
5: करता हूँ।
2: आरबीआई कहता है,
6: सही माली बर्ताव करे आपका बचाव।
7: आदाब। आज का तबसरा लेकर मैं मुबशिर रफाई। 11 अक्टूबर को हर साल दुनिया भर में बच्चियों का आलमी दिन मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का बुनियादी मकसद बच्चियों के हकूक, उनकी तालीम तरबियत, सेहत, तहफ्फुज़, मसावी मौके और बावकार जिंदगी की अहमियत को उजागर करना है। ये दिन हमें इस हकीकत का एहसास दिलाता है कि किसी भी माशरे की तरक्की, खुशहाली और पायदार मुस्तकबिल का ख्वाब उस वक्त तक शर्मिंदगी ताबीर नहीं हो सकता है जब तक वहां बच्चियों को यकसां हकूक, महफूज माहौल और अपनी सलाहियतों को बरोयकार लाने के मसावी मौके फराहम न किए जाएं। बच्ची महज एक खानदान की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि वो माशरे की तामीर, कौमी तरक्की और इंसानी तहजीब के तसलसल में बुनियादी किरदार अदा करने वाली एक अहम कुव्वत है। दुनिया का हर मजहब औरत और बच्ची को इज्जत तकरीम का मकाम देता है। इस्लाम ने भी दौरे जाहिलियत में बच्चियों के साथ रवा रखे जाने वाले इम्तियाजी सलूक की मजम्मत करते हुए बेटी की पैदाइश को बाईस शर्मिंदगी नहीं बल्कि खालिक कायनात की अता करार दिया है। इस तनासुर में बच्चियों के हकूक का तहफ्फुज महज एक समाजी तकाजा नहीं बल्कि हमारी अखलाकी, इंसानी और मजहबी जिम्मेदारी भी है। बच्चियों की तालीम कौमी तरक्की का एक बुनियादी सतून है। तालीम याफ्ता बच्ची न सिर्फ अपने हकूक फराइज से आगाह होती है बल्कि मुस्तकबिल में एक बाशऊर माँ, जिम्मेदार शहरी, बासलाहियत पेशेवर और माशरे की मौसर रुकन के तौर अपना किरदार अदा कर सकती है। जरूरी है कि हर बच्ची को बिला इम्तियाज मियारी तालीम तक रसाई हासिल हो, बिलखसूस दूर दराज और पसमानदा इलाकों में बच्चियों की तालीम के रास्ते में हाइल रुकावटों को दूर करना वक्त की अहम जरूरत है। बच्चियों को महफूज माहौल फराहम करना रियासत, खानदान और माशरे की मुश्तरक जिम्मेदारी है। तालीमी इदारों, घरों, अवामी मकामात और डिजिटल दुनिया में उनके तहफ्फुज़ को यकीनी बनाने के लिए मौसर इकदामात किए जाने चाहिए। बच्चों के खिलाफ तशद्दुद, हिरासानी और इस्तेसाल की रोकथाम, शिकायत के काबिल एतमाद निजाम, मुतासिरा बच्चियों की राजदारी पर खसूसी तवज्जो जरूरी है। इस तरह बच्चियों की मुनासिब गजाइत, सेहत की सहूलतों, जहनी सेहत और उम्र के मुताबिक रहनुमाई को भी बुनियादी अहमियत दी जानी चाहिए। बच्चियों को अपनी सलाहियतों के इजहार के लिए तालीम के साथ साथ खेल, साइंस, टेक्नोलॉजी, फनून, तहकीक और दीगर मुस्बत सरगर्मियों में शिरकत के मौके फराहम करना भी नागुजीर है। उन्हें ये एतमाद दिया जाना चाहिए कि उनकी राय अहम है, उनके ख्वाब काबिल कद्र हैं और वो अपनी मेहनत, काबिलियत और अज़्म के जरिए जिंदगी के हर शोबे में नुमाया मकाम हासिल कर सकती हैं। सिन्फी इम्तियाज के खात्मे और मसावी मौके की फराहमी से न सिर्फ बच्चियों की शख्सियत निखर सकती है बल्कि पूरा माशरा तरक्की की राह पर गामजन हो सकता है। बच्चियों के आलमी दिन के मौके पर सरकारी व गैर सरकारी सतह के मुतल्लिकीन को चाहिए कि वह बच्चियों के हकूक के तहफ्फुज़ के लिए मौसर पॉलिसियों, आगाही मुहिमात और फलाही इकदाम को फरोग दें। इसी तरह दस्तियाब आदादुशुमार की बुनियाद पर मसाइल की निशानदेही और इकदाम के नतीज का बाकायदा जायजा लिया जाए ताकि पॉलिसियों के सम्राट हकीकी मानों में बच्चियों तक पहुंच सकें। वालिदैन, असातिज़ा, उलमाई किराम, ज़राई अबलाग और सिविल सोसाइटी को भी इस कौमी जिम्मेदारी में अपना हिस्सा डालना चाहिए। घरों में बेटों और बेटियों के दरमियान इम्तियाज से गुरेज, मुस्बत तरबियत, एतमाद की फजा और बच्चियों की राय का एहतराम एक ऐसे माशरे की बुनियाद रखता है जहां हर फर्द को इज्जत और मौके हासिल हों। बच्चियों का आलमी दिन महज एक दिन की तकरीब या रस्मी पैगाम तक महदूद नहीं रहना चाहिए बल्कि ये हमें अपने तर्ज अमल का जायजा लेने और अमली इकदाम का अहद करने का मौका फराहम करता है। हमें ऐसा माशरा तश्कील देना चाहिए जहां किसी भी बच्ची का मुस्तकबिल उसकी जेंस, माशी हैसियत या जाय सकूनत की वजह से महदूद न हो, जहां उसे तालीम, सेहत, तहफ्फुज़ और तरक्की के मसावी मौके मयसर हों और जहां उसकी सलाहियतों को कौमी असासा समझा जाए। अलगरज।
8: हम आकाशवाणी करगिल साहब से मुखातिब हैं। शब के 8 बजे चाहते हैं समय ना ये प्रोग्राम समाप्त

जय हिंद। फिल्मी नगमों पर मैं अपनी फौजी भाइयों के प्रोग्राम लेकर इस वक्त आकाशवाणी करगिल से हम हाजिर खिदमत है। प्रोग्राम सुनने वाले सभी फौजी भाइयों को हमारे ओर से खुलूस भरा आदाब। और आज के इस प्रोग्राम में खैर मकदम पेश करते हैं दोस्तों। आज के इस प्रोग्राम में आप चंद पुरानी तर्ज के फिल्मी नगमे समाप्त करेंगे।

दोस्तों, आइए अब प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए किशोर कुमार को सुनते हैं। फिल्म लावारिस में ये नगमा लिखा है अनजान ने और मौसीकी तरतीब दी है कल्याण जी आनंद जी ने।

0: फौजी भाई अपना मनपसंद प्रोग्राम इस वक्त आकाशवाणी करगिल से समाप्त कर रहे हैं। दोस्तों, आपका ये प्रोग्राम मीडियम वेव 1584 किलोहर्ट्ज़, मीडियम वेव 684 किलोहर्ट्ज़, एफएम सुईशर 1 मेगाहर्ट्ज़ और साथ ही साथ न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर भी समाप्त कर सकते हैं। दोस्तों, आप सुनते रहिए प्रोग्राम आकाशवाणी करगिल।
1: डैडी डैडी, गाड़ी रुक गई, चलाओ ना।
2: बेटा, चाबी भर दूंगा, फिर चलने लगेगी। ये देखो
1: डैडी, देखो फिर रुक गई। क्या हर बार चाबी भरनी होगी?
2: हाँ बेटा, हर बार।
3: इसलिए LIC लाया है जीवन लाभ, एक ऐसी एंडाउमेंट पॉलिसी जिसमें एक निश्चित अवधि के बाद आपको प्रीमियम नहीं भरना होगा, फिर भी फायदों का सिलसिला चलता रहेगा।
4: LIC, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी।
5: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल, जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: QR कोड स्कैन करो, 5,000 का कैशबैक पाओ, वाह दिन बन गया।
2: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए,
3: RBI कहता है
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: ये कहानी है एक फोटोग्राफर और उसके हमजात की। वाह क्या कहने, बहुत खूब। बिजनेस लोन अप्रूव्ड। अब होगा बड़ा स्टूडियो, नया कैमरा, नई लाइट्स, लगे हाथ नई कार भी ले लो उसी लोन से। ना, लोन लिए गए काम में ही लगाओ, वक्त पर EMI चुकाओ, क्रेडिट स्कोर बढ़ाओ और अगला लोन आसानी से पाओ। कार नहीं तो मेरी फोटो ही ले लो, आपकी तारीफ।
6: RBI कहता है
5: माली समझदारी, खुशहाल नारी।
7: वक्फे के बाद फौजी भाइयों को फिर से अपने प्रोग्राम में खैर मकदम पेश करते हैं। दोस्तों आप सुनते रहिए प्रोग्राम आकाशवाणी करगिल।

अभी आपने लता मंगेशकर और मनमोहन सिंह को सुना, फिल्म थी वारिस। दोस्तों, ये प्रोग्राम का अगला अपना समाप्त करें मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजों में। फिल्म का नाम है हसीना मान जाएगी। ये नगमा कलमन किया है अख्तर रोमानी ने और मौसीकी तरतीब दी है कल्याण।

0: अभी आप प्रोग्राम समाप्त कर रहे थे फौजी भाइयों के लिए। हम आकाशवाणी करगिल से आपसे मुखातिब हैं। सामिन, अभी खबरों का वक्त हुआ चाहता है। अब हम आकाशवाणी दिल्ली से हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू खबरनामा रिले करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु में 13,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। भारत की प्रगति को समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और वैज्ञानिक उपलब्धियों से प्रेरित बताया। प्रधानमंत्री ने कहा, देश युवाओं को अपार अवसर प्रदान कर रहा है। देश के विकास के लिए युवाओं से अपनी क्षमताएं पहचानने का आग्रह किया। सर्वोच्च न्यायालय ने अधिकारियों को शांतिपूर्ण प्रदर्शन में शामिल लोगों की अवैध हिरासत रोकने और सुचारू यातायात जारी रखने के निर्देश दिए। भारत ने नई दिल्ली में हुई घटनाओं पर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की टिप्पणियां खारिज की, इसे दोहरा मापदंड और अपने आंतरिक मामलों में अनुचित हस्तक्षेप बताया। नेपाल की बूढ़ी गंडकी नदी में अचानक बाढ़ से गोरखा जिला प्रभावित, अब तक 80 लोगों को बचाया गया और 5 लापता। काहिरा में

0: निशानेबाजी विश्व कप में उदयवीर सिद्धू ने 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज चेन्नई में 13,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने इसे ऐतिहासिक अवसर बताया। उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं से संपर्क सुविधा बेहतर होगी, उद्योग और व्यापार मजबूत होंगे तथा राज्य के युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर उपलब्ध होंगे। श्री मोदी ने कहा कि ये परियोजनाएं दैनिक यात्रा आसान बनाएंगी और राज्य की आर्थिक वृद्धि में मदद करेंगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि तमिलनाडु में परंपरा और आधुनिक विकास साथ साथ जारी हैं।
1: मंदिर से मेट्रो तक तमिलनाडु के ये अनुभव, यही आज के भारत की स्पिरिट है। भारत अपनी सांस्कृतिक शक्ति से प्रेरणा लेता है, विज्ञान की प्रगति से आगे बढ़ता है और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए नए अवसरों का निर्माण कर रहा है। हमारी विरासत और भविष्य की हमारी आकांक्षाएं साथ साथ आगे बढ़ रही है।
0: इससे पहले श्री मोदी ने चेन्नई मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण के पूनमल्ली वडा पलानी खंड का शुभारंभ किया। चेन्नई में एक अन्य समारोह में प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया उभरती हुई चुनौतियों का समाधान तलाश रही है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि देश के युवाओं में ये समाधान देने की प्रतिभा और क्षमता है। श्री मोदी ने कहा कि युवा विकसित भारत का संकल्प पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।
1: विकसित भारत के लिए जो नए आइडियाज चाहिए, जो नए सॉल्यूशंस चाहिए, उनसे भारत ही नहीं विश्व का भविष्य भी तय होगा। टुडे द वर्ल्ड इज लुकिंग फॉर सॉल्यूशंस एंड यू हैव द पोटेंशियल टू प्रोवाइड दिस दोज सॉल्यूशंस।
0: प्रधानमंत्री ने युवाओं से अपनी क्षमताओं का उपयोग करने और राष्ट्र के विकास में योगदान देने की अपील की।
1: आज भारत में जो इनफाइनाइट अपॉर्चुनिटी है, मैं चाहता हूं कि हर युवा अपने भविष्य को उसी बड़े कैनवास पर देखे, बिकॉज दिस इज योर टाइम, दिस इज योर अपॉर्चुनिटी। मुझे पूरा विश्वास है हमारा ये सपना पूरा होकर रहेगा।
0: श्री मोदी ने कहा कि विनिर्माण क्षेत्र के विस्तार से युवाओं के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर उपलब्ध हुए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि युवा भारत को खेलों के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे।
1: भारत 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी की तैयारी कर रहा है। हम 2036 ओलंपिक्स की मेजबानी का सपना भी लेकर आगे बढ़ रहे हैं। आने वाले वर्षों में जब दुनिया के बड़े स्पोर्ट्स इवेंट भारत में होंगे, इसलिए भारत के युवाओं के पास अब प्लेटफॉर्म भी है, पोटेंशियल भी है और सपोर्ट भी है।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल। जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन के लिए लोगों को अवैध हिरासत में नहीं लेने और यातायात सुचारू तरीके से जारी रखने के निर्देश दिए हैं। न्यायालय ने दिल्ली में बैरिकेडिंग व्यवस्था की समीक्षा करने, मेट्रो सेवाएं समय सारणी के अनुसार और इंटरनेट सेवा निर्बाध रूप से जारी रखने को कहा। न्यायालय ने कहा कि वकीलों के पेशेवर दायित्वों के निर्वहन में बाधा नहीं डाली जानी चाहिए। भारत ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त के दोहरे रवैये और सार्वजनिक मामलों पर चुनिंदा तरीके से प्रतिक्रिया देने के तरीके की आलोचना की है। भारत ने नई दिल्ली में कल की घटनाओं पर संगठन की टिप्पणियां खारिज कर दी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने संगठन की टिप्पणियों को गैर जरूरी और देश के आंतरिक मामलों में अस्वीकार दखलंदाजी बताया। श्री जायसवाल ने कहा कि भारत के पड़ोस में विरोध प्रदर्शनों पर हिंसक प्रतिक्रियाओं पर कोई टिप्पणी नहीं की गई। उन्होंने कहा कि इस तरह के दोहरे रवैये से संगठन की विश्वसनीयता घटती है। श्री जायसवाल ने कहा कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है।
2: हमने कल की घटनाओं के बारे में मानवाधिकार उच्च आयुक्त के कार्यालय की कुछ टिप्पणियों को देखा।

0: भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है जहां शांतिपूर्ण सभा करने के अधिकार की गारंटी संविधान में दी गई है। हमारे मजबूत संस्थान, स्वतंत्र न्यायपालिका और मीडिया इस अधिकार को सुरक्षित रखते हैं। हर लोकतंत्र की तरह भारतीय नागरिक सार्वजनिक व्यवस्था और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इस अधिकार का प्रयोग करते हैं।
1: पब्लिक ऑर्डर एंड सेफ्टी।
2: भारतीय जनता पार्टी ने सांसद और प्रोफेसर बिमोल अकोइजम के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने पर कांग्रेस की आलोचना की है। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय ने यौन उत्पीड़न के आरोपों के बाद बिमोल अकोइजम की सेवाएं समाप्त कर दी थीं। नई दिल्ली में पार्टी सांसद बांसुरी स्वराज ने कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व की चुप्पी पर सवाल उठाए।
3: जेएनयू ने पॉश एक्ट के तहत एक इंटरनल कमिटी बिठाई। इस कमिटी ने तमाम सबूतों, तमाम विटनेसेस और तमाम सर्वाइवर्स की विटनेस टेस्टिमनी के बाद, सारे के सारे तथ्यों की जांच करने के बाद तुरंत बिमोल अकोइजम को नौकरी से बर्खास्त किया। फेमिनिज्म कांग्रेस पार्टी के लिए केवल एक हैशटैग से शुरू होता है और जवाबदेही की दहलीज पर आकर समाप्त हो जाता है।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जन सेवा में 25 वर्ष पूरे कर लिए हैं। जन सेवा से देश सेवा इस यात्रा का मूल मंत्र रहा है। सेवा और सुशासन की इसी दृष्टिकोण के साथ भारत सरकार को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य हासिल करने के लिए लगातार काम कर रही है। आज विशेष श्रृंखला में बात औपनिवेशिक मानसिकता से मुक्ति के लिए की जा रही पहल की।
4: पिछले कुछ वर्षों में सरकार धीरे धीरे भारत से ब्रिटिश शासन की निशानियों को हटाने की दिशा में काम कर रही है। 15 अगस्त 2022 को 76वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले से देश को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगले 25 वर्षों के लिए 5 संकल्पों यानी पंच प्रण की घोषणा की थी। दूसरे प्रण के बारे में विस्तार से बताते हुए उन्होंने कहा कि नागरिकों के जीवन के किसी भी हिस्से में, यहाँ तक कि उनके मन के सबसे गहरे कोने या उनकी आदतों में भी गुलामी का कोई अंश नहीं होना चाहिए।
5: सैकड़ों साल की गुलामी ने जहाँ हमें जकड़ कर रखा है, यानी हमारे मनोभाव को बांध करके रखा हुआ है, हमारी सोच में विकृतियां पैदा करके रखी है। हमें गुलामी की छोटी सी छोटी चीज भी कहीं नजर आती है, हमारे भीतर नजर आती है, हमारे आसपास नजर आती है, हमें उससे मुक्ति पानी ही होगी।
4: देश को उपनिवेशिक विरासत से मुक्त करने और एक अलग भारतीय पहचान को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कई क्षेत्रों में कई कदम उठाए हैं। नई दिल्ली के ऐतिहासिक राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ कर दिया गया। भारतीय नौसेना ने पुराने ध्वज जिसमें सेंट जॉर्ज क्रॉस बना हुआ था की जगह वर्ष 2022 में अपना नया ध्वज अपनाया। सरकार ने वर्ष 2017-18 से रेल बजट को आम बजट में मिला दिया। इसके साथ ही वर्ष 1924 से चली आ रही एक परंपरा समाप्त हो गई। बीजेपी नेता राम माधव ने कहा,
6: वी लिव्ड एज अ नेशन, हम कम से कम 5000 वर्षों से एक राष्ट्र के रूप में जी रहे हैं। इतने लंबे इतिहास में हमने एक महान राष्ट्र, महान इतिहास, महान स्मारक, महान ऐतिहासिक स्थल बनाए हैं। वे सहस्त्राब्दियों से भारत की पहचान रही है। महान पहचान आज यही हो रहा है, यही वह है जिसे हम औपनिवेशिक मानसिकता से मुक्ति कहते हैं,
1: डीकॉलोनाइजेशन।
4: सरकार ने ब्रिटिश शासन के दौरान प्रतिबंधित साहित्य को फिर से सामने लाने का भी प्रयास किया है। इसके तहत भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार स्वतंत्रता संग्राम के दौरान प्रतिबंधित कविताओं, लेखों और प्रकाशनों की एक सूची तैयार कर रहा है। ये सभी पहल एक ऐसे आत्मविश्वासी और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है जो अपनी सांस्कृतिक विरासत और राष्ट्रीय मूल्यों पर आधारित है। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। 9 दिवसीय शारदीय नवरात्र उत्सव आज पूरे देश में धार्मिक उत्साह और भक्तिभाव के साथ शुरू हो गया।

देवी दुर्गा की पूजा अर्चना के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु प्रमुख मंदिरों में पहुंच रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पावन अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि देवी दुर्गा के 9 रूपों की पूजा लोगों को आत्मानुशासन और नैतिक मूल्य स्वीकार करने के लिए प्रेरित करती है। ये महोत्सव नारी के सामर्थ्य, साहस और दृढ़ता में विश्वास को मजबूत करता है। भारत में त्योहारी खरीदारी सीजन

0: की शुरुआत जोरदार रही। एक रिपोर्ट के अनुसार देश के प्रमुख ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स ने फेस्टिव सीजन में पहले दो दिनों में करीब 24,000 करोड़ रुपए की बिक्री की है। इस दौरान लोगों ने स्मार्टफोन, इलेक्ट्रॉनिक्स, घरेलू उपकरणों और फैशन उत्पादों की जमकर खरीदारी की। त्योहारी सीजन के पहले दो दिन की बिक्री सामान्य दिनों की तुलना में लगभग 6 गुना अधिक है। नेपाल के गोरखा जिले में बूढ़ी गंडकी नदी में अचानक बाढ़ के बाद अब तक 9 विदेशी नागरिकों सहित 80 से अधिक लोगों को बचा लिया गया है। 5 लोग अब भी लापता हैं। आज सवेरे लगभग 4 बजे आई बाढ़ में घर और पुल बह गए और कई जल विद्युत परियोजनाएं क्षतिग्रस्त हो गईं। पाकिस्तान ने खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में बिगड़ती कानून व्यवस्था के कारण आपातकाल घोषित कर दिया है। राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने प्रांत में संवैधानिक व्यवस्था के विफल होने पर आपातकाल लागू किया। इस कदम से पाकिस्तान की संघीय सरकार को मुख्य कार्यकारी और विधायी शक्तियां अपने हाथ में लेने का अधिकार मिल गया। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि रूस और यूक्रेन ऊर्जा केंद्रों पर हमले रोकने के लिए सहमत हो गए हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि युद्ध विराम तत्काल प्रभाव से लागू होगा। उन्होंने दोनों देशों से समझौते का पालन करने का आग्रह किया। इस बीच रूस और यूक्रेन दोनों ने ही युद्ध विराम पर तत्काल कोई टिप्पणी नहीं की है। सऊदी अरब के किंग खालिद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हुती विद्रोहियों के हमले में 12 लोगों की मौत हो गई और 309 अन्य घायल हुए। भारत ने इन हमलों की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि लोगों और असैन्य ढांचे पर हमले अस्वीकार्य हैं और इन्हें तत्काल रोका जाना चाहिए। इस बीच विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने बताया कि रियाद में भारतीय दूतावास घायल 11 भारतीयों की मदद के लिए सभी आवश्यक कदम उठा रहा है। दूतावास उनकी सहायता के लिए स्थानीय अधिकारियों के संपर्क में है। मिस्र में निशानेबाजी विश्व कप में उदयवीर सिद्धू ने 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीत लिया है। उन्होंने फाइनल में 240.6 अंक के साथ अपना पहला सीनियर विश्व खिताब जीता। अनमोल खरब ने तुर्की इंटरनेशनल चैलेंज बैडमिंटन का महिला सिंगल्स खिताब जीत लिया है। अनमोल ने फाइनल में आकर्षी कश्यप को हराया। इंदौर में भारत ने वेस्टइंडीज को तीसरे T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में 224 रन का लक्ष्य दिया है। भारत ने निर्धारित 20 ओवर में 10 विकेट पर 223 रन बनाए। अभिषेक शर्मा ने सर्वाधिक 69 रन बनाए। 5 मैच की श्रृंखला में दोनों टीम 1-1 की बराबरी पर हैं। मौसम विभाग ने कल हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में बिजली चमकने के साथ बरसात होने और तेज हवा चलने का अनुमान व्यक्त किया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु में 13,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। भारत की प्रगति को समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और वैज्ञानिक उपलब्धियों से प्रेरित बताया। प्रधानमंत्री ने कहा, देश युवाओं को अपार अवसर प्रदान कर रहा है। देश के विकास के लिए युवाओं से अपनी क्षमताएं पहचानने का आग्रह किया। सर्वोच्च न्यायालय ने अधिकारियों को शांतिपूर्ण प्रदर्शन में शामिल लोगों की अवैध हिरासत रोकने और सुचारू यातायात जारी रखने के निर्देश दिए। भारत ने नई दिल्ली में हुई घटनाओं पर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की टिप्पणियां खारिज की, इसे दोहरा मापदंड और अपने आंतरिक मामलों में अनुचित हस्तक्षेप बताया। और काहिरा में निशानेबाजी विश्व कप में उदयवीर सिद्धू ने 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही समाचार संध्या का यंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम निशित कुमार विद द न्यूज एट 9। The headlines. Prime Minister Narendra Modi launches development projects worth over 13,000 crore rupees in Tamil Nadu, stresses India's progress draws strength from rich cultural heritage and scientific achievements. Prime Minister Modi asserts India offers immense opportunities for youth, urges them to realize their potential for nation's development. Supreme Court directs authorities to ensure unrestricted movement of people and peaceful gatherers are not illegally detained. India rejects UN rights body's remarks on New Delhi events, cites double standards and unwarranted interference in its internal affairs. Flash floods hit Gorkha district of Nepal, 80 people rescued so far, 5 missing. An Indian shooter Udayveer Sidhu wins the gold in men's 10.

0: कि भारत दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत है जहां आईन पुरअमन तौर पर इज्तिमा करने के हक की जमानत देता है। इस हक के तहफ्फुज के लिए मुल्क में मजबूत इदारे, आजाद अदलिया और आजाद जराए अबलाग मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय शहरी अमनो अमान और सलामती बरकरार रखने से मुतालिक शरायत के तहत इस हक का इस्तेमाल करते हैं। दुबई में भारत के कौंसुलेट जनरल ने तस्दीक की है कि तेल बरदार जहाज MTGEM नंबर 2 पर सवार अमले के तमाम 22 भारतीय अरकान को बहिफाजत बचा लिया गया है और वो पूरे तौर पर महफूज हैं। वाज़ह रहे कि रासल खैमा के साहिल के करीब मस्कूरा जहाज में आग लगने का वाकया पेश आया। कौंसिल खाने ने एक ताजा बयान में कहा है कि वो मुत्तहदा अरब इमारात के हुक्काम के साथ मुसलसल राबते में है और भारतीय जहाजरानों को हर मुमकिन मदद और तआवुन फराहम कर रहा है। इमारात न्यूज एजेंसी के मुताबिक मुत्तहदा अरब इमारात की नेशनल गार्ड कमांड के कोस्ट गार्ड डिवीजन ने कल एक तेल बरदार जहाज में आग लगने की इत्तला मौसूल होने के बाद 22 एशियाई शहरियों को बचाया था। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अवामी खिदमत के 25 साल मुकम्मल कर लिए हैं। जन सेवा से देश सेवा के मंत्र और पुख्ता अज़्म के साथ ये सफर आगे बढ़ा है और ये सिलसिला आज भी जारी है। सेवा और सुशासन के उनके नजरिए से रहनुमाई हासिल करते हुए सरकार 2047 तक विकसित भारत के मकसद को हासिल करने की सिमत लगातार काम कर रही है। जामे तरक्की और समाजी एतबार से बाइख्तियार बनाए जाने से इस पुख्ता अज़्म के जरिए लोगों की जिंदगी बदल रही है। अपनी खसूसी सीरीज के तहत आज हम इस बात का तस्करा कर रहे हैं कि नव आबादियाती जहनियत को खत्म करने के मकसद से किए गए इकदाम के जरिए इस नजरिए को किस तरह अमली शक्ल दी गई है।
1: जदीद भारत की तारीखी बरतानवी इस्तेमार की 2 सदियों से गहराई के साथ वाबस्ता है और आजादी के बाद भी कई दहाइयों तक इसके असरात बरकरार रहे। गुज़श्ता चंद बरसों के दौरान हुकूमत मुल्क को बरतानवी दौरे हुकूमत की यादों से बतदरीज दूर ले जाने की कोशिश कर रही है। 15 अगस्त 2022 को 76वें यौम आजादी के मौके पर लाल किले की फसील से कौम से खिताब करते हुए वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अगले 25 बरसों के लिए 5 अजायम या पंच प्रण पेश किए। दूसरे अज़्म की वजाहत करते हुए वजीर आजम ने कहा कि शहरियों की जिंदगी के किसी भी शोबे में, हत्ता के जहन के गहरे गोशों और आदातों अतवार में भी गुलामी का जर्रा बराबर असर नहीं होना चाहिए।
2: सैकड़ों साल की गुलामी ने जहां हमें जकड़ कर रखा है, हमारे मनोभाव को बांध करके रखा हुआ है, हमारी सोच में विकृतियां पैदा करके रखी है। हमें गुलामी की छोटी चीज भी कहीं नजर आती है, हमारे भीतर नजर आती है, हमारे आसपास नजर आती है, हमें उससे मुक्ति पानी ही होगी।
1: मुल्क को नौ आबादियाती विरासत से आजाद कराने और एक मुनफरिद भारतीय शिनाख्त को फरोग देने के लिए हुकूमत ने मुख्तलिफ शोबों में मुतअद्दिद अक़दामात किए हैं। नई दिल्ली में तारीखी राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ रखा गया, जिसका इफ्तिताह वजीर आजम ने 2022 में किया था। इसी तरह मुजाहिद आजादी नेताजी सुभाष चंद्र बोस का एक अजीमुशान मुजस्मा इंडिया गेट के करीब नसब किया गया, जिसने वहां नसब शुदा शाह जॉर्ज पंजम के मुजस्मे की जगह ले ली। भारतीय बहरिया ने भी 2022 में अपना नया परचम अख्तियार किया, जिसमें पहले मौजूद सेंट जॉर्ज की सलीब को हटा दिया गया। हुकूमत ने माली साल 2017-18 से रेलवे बजट को मरकजी बजट में जम कर दिया। इस तरह 1924 से चली आ रही इस रिवायत का भी खात्मा हो गया। बीजेपी रहनुमा राम माधव ने कहा कि भारत की सकाफती और तहजीबी शनाख्त को बहाल करना खुद एतमादी और खुददारी की एक अलामत है। उन्होंने मजीद कहा कि नौ आबादियाती असरात से निजात दरअसल हकीकी हुब्बुल वतनी का अमल है जो आज मुल्क में जारी है। हुकूमत ने बरतानवी दौरे हुकूमत में ममनू करार दिए गए अदब को दोबारा जिंदा करने की भी कोशिश की है। इस मकसद के तहत नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया ने तहरीक आजादी के दौरान ममनू करार दी गई नज्मों, तहरीरों और मतबूआत की एक फहरिस्त तैयार की है। इसके अलावा हुक्मरानी को आसान बनाने और फरसूदा कवानीन को खत्म करने की कोशिशों के तहत हालिया बरसों में 1500 से ज्यादा पुराने कवानीन मनसूख किए जा चुके हैं। नई दिल्ली से अक्षित वैद्यान की रिपोर्ट के साथ।